छाख पे फूली तू सूखम हुआ अस्थूली, तू जल निध तू खेन बुदबुदा तुझ बिन अवर ना पाली है जियो। तू सूत मणियां पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ सोई अवर न कोई दखाली है जियो। तू निर्गुण

नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नजर निहाली है जियो। तू पेड़ साख तेरी फूली तू सुखम।

पंथ की वार महल्ला पन्ना हर का नाम पिलाए चाहे कर्म लखन से पाया मासण प्रपमण मौलिया अमृत फल पाए मिल साधु सुख उपजे लखी नानक सुमरा एक नाम।

रहाऊ। सब सुरती मैल सुरत कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तल बढ़ियाई। सब सत सब तप सब चंग आईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया। तुद बैण सिद्धिक नैना पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाकर हाईया।

तेरी अनेक तेरी अनेक करहे हर पूजा जी, तप तप हैं जप हैं बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव हैं मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जी बड़े वरना कोई।

होई। तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जीन, तुदे आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जीन, जो सब सह का जन होई। आस्था महला चौथा।

गुरमुख प्रगट होए। आस्था महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, बाणी पावक तनहे किया। पंकज मोह बग नहीं चाल, हम देखा तै डूबी अले। मान एक न चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया राओ। ना हो जति सदी नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक जन की शरणा, जन तू नाही विसरया। आस्था महला पंजवां, भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै राऊ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ द रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो ब्रत पारा, हमरे दोष सब तुम काव हो। आप हाथ दय मोहे बचाव हो।

कब आज संग्रह पूर्ण होए हमारी आशा, दौर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरे हैं, मरण काल का त्रास निवरे हैं। हो जो सदा हमारे पछा, सरिया सतुजु करे हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए सब जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु परगासा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताय हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझयो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर बशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, गड़ गड़ के बट बट की जाने। जब उध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरे तंदरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कार्य पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव का कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पेन पेन तो तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा।

बहोर रच दे नहीं कहूं भूल राजा अब बैठा कहूं सुमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पव आदि जुगाद स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार या सिख संगरो दोष जेते उठ बद बाता सकल मलेश करो रण काता जे अस ध्वज तब सरणी परे जिनके दोष दुखता वह मरे पुरख जब

आई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने आऊ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तो है बखाने दोहरा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज से ती मन भजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां, शब्दो तांगा वो हरि के राम मन जनी बसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

अनहद वाजे, आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच ते

सबसे अधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। ए वास्तत जिन जाई नित नित रख और धारो। तम संसार चरण लग तरिय सब ना

सुनै सो मुकता हम तिसकै सद कुर्बानी। हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नानक नाम देहु मंगत जन कौ।

तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालां गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालां गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। गुर सिख मीत चलहो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो।

날 뿌린 빵이야 돼. खालसा जी गज के कहो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान की मुर्दा हुई कौम सतगुरों ने केसगढ़ के मैदान अंदर बुला के कहा मैं नागा रूप पावांगा तीरों के अगे मैं बिजली नचाऊ शमशीरों के अगे मैं टुटी हुई गरीब की किस्मत न जोड़ा एक धार के अगे बाई धारा रोड़ा मैं कबर चो मुर्दे जगाने सुते मैं किश्ती नचाऊ तूफानों के उत्ते गिदड़ा वांगू डरते रहन वाले बबुल शेर बना दिता है बगानिया जूठा खाण वाले अपनी मार मारनी सिखा दिखती धन गुरु नानक देव जी ने लाए सिखी के पुत्र पुत्र ने खून पा के लहराउन ला दिता है। अब एक पासे सरकार ने अब चुकी हुई है दूजे पासे कदारा चौधरा भुखे कुर्सी के यारा ने पंच नू वंड छड़िया पर फिर भी दसवें पिता के पंच के निशान झूलते रहेंगे।

हमारी सीटें कौन पहुंची है बेटे। मैं 25 साल से यू पार के जवान किता, अब जो समा आ गया है मैनू भावे ना कहने वाला कोई ना रहे, पर यह ना सुना कि तारू सिंह अंक नट्टा लग गया है। दे पुत्ता एक मां की गोद सुनी होके लख गुलामा का पड़ा हुंदा होवे ता कोई सौदा नहीं जानी, पर फिर भी शेर की सीढ़ी मां के दिल के अंदर दर्द क्यों।

तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसट, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्स मन चाओ। सार महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। बैसलो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक हिरह पर दरबा, अंतर झूठ गमान। शास्त्र वेद की बिद नहीं जान है, व्यापे मन कै मान। संध्या काल करह सब वर्ता, जो सफरी दम्फान। प्रभु पुलाए उजड़ पाए, निफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसलो पढ़िया, जिस करी कृपा भगवान। उन सतगुर सेव परम पद पाया, उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है, प्रभ भावै तिवै बलान। साध संगत की तूर एक मांगो, जन नानक पयो सरान। सारंग महला पंजवा, अब मोरो नाचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो, सतगुर बचन लहो रहाओ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो हो तो फिरो। जब ते शुद्ध पय है बारह, तब ते थान फिरो। जो दिन रहन तौ लो बजियो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस लीको।

कालर बिरख जे वहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसानेहा आन अपाउ न को सूजे हर दास्ता सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटी है जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेउ अनक पात अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाउ निसबासर प्रिय प्रिय मुख तेरो नींद पलक नहीं जागियो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे बिन पिर सबै बिख लागियो पूछो पूछो दीन भांत कर को कह प्रिय देसांगियो हियो देउ सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरु देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलाव हो निमुख दर्श पे खागियो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत सादा बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं चीक गांठरी बांधा रहाओ निसबासर नखे अतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बासबो गुरु गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारु तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगल बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभ पावु दीजै साध संगत कृपानंद नानक पूर रहयो है सर्ब मैं सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते भवह तराय रहाओ सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर शोध

अमृत नाम अमोलक, ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत, जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत। जा को हृदय प्रगास भयो हर, वाकी कही ना जाए कहावत, आन अपाव जेते किस कही है, तेते सीखे पावत। अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो, अगम जैसे परखावत, निर्गुण निरंकार अबनासी, अतुल्यो तुल्यो ना जावत। कहो नानक अजार जिन जरिया, तिसही कहो बन आवत। सार महला पंजवा, बिखई दिन रैन इव ही गुदारे, गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता, जन्म जूऐ ज्यों हारै रहाउ। नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों,

उड़ै बस्तर काजर मह परिया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठांडो खाए खाए मुछकार गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाई पहुंच ना सके गुवारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जाके हृदय वसिया तिन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रीसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सार महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लही है रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वडभागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सार महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जा कै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कौ सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन।

नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग मोहल्ला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिजायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साध है मंत्र मोर लो

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु बिद उमकाई रहाउ चितवन चितव हो प्रिय प्रीत बैरागी कद पाव हो हर दरसाई जतन करो एह मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमख प्रिय दर्शन खावे तिस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारंग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तोह गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कह संग सुहाई करो कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरम संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जेह प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवा वा अवसर कह हो बल जाई आठ पैर अपना प्रभ सिमरन बड़ भागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रिनाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नास है आगे दरगाह हुए खलास सरल तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्श प्यास सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन उतारन मान को खोज लहे नानक।

तेरे मिटह सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ। छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए। जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राई। एक बिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए। मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साई। सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पए पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ। मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन त्यों गोष्ट से तरे। बूढ़त कोर अंधकूप में है ते साधु संग पार परे। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे। तिनकी धूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय। एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठ है पाए रहाउ। दलाब देह जप होत पनीता जम की त्रास निवार। महापतक के पातक उतर है हर नामा उर तार। जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाईए वडभागी मन तन हुए बिगासा। सार महला पंजवा दो पदे घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मोहन घर आवो करो जो दरिया मान करो अब मान न बोलो। भूल चूक तेरी प्रिय चिरिया रहाओ। निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया। होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया।

प्रेम रंग पाइए, उन प्रेम रंग पाइए, दुर्मुख है प्याइए, उन प्रेम रंग पाइए, हाँ दुर्मुख है प्याइए।

0: भजन को रेत करो, भजन को रेत करो, पाठ को पाठ करो,
1: भजन को रेत करो,
0: पाठ को पाठ करो, जन्म कुल उधरो, जन्म कुल उधरो,

दर्शन तो दर्शन तो दर्शन तो दर्शन तो दर्शन तो दर्शन तो दर्शन का दर्शन का

बल बल गुर कर आया, बल बल गुर कर आया, बल बल गुर कर आया, बल बल गुर कर आया, बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल बल चरण कमल को, बल बल बल चरण कमल को, बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर कर आया, बल बल

अचरज अब किछु कहर न जाई अब किछु कहर न जाई अचरज एक सुधारे पंडिया अचरज एक सुधारे।

अपना नाम जपाओ, अपना नाम जपाओ, अपना नाम, अपना नाम जपाओ, हर हर हर गुण गाओ, हर हर हर गुण गाओ, हर हर हर गुण गाओ।

स्तोत्रना वाहिनी वाहिनी स्तोत्रनाम वाहिनी गुरु वाहिनी वाहिनी जी का खालसा वाहिनी जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन प्यासे दिन रात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुरमेलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एहे बेनंती सुन प्रभ मेरे देहि नाम कर अपने चेरे हमें अवगुण पर एक गुण नाही अमृत शाड़ दिखा बिखपाई माया मोह परम पै भूले सुतदा रास्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेवी है पहन सुसहज सुपाई दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हो गए शिव सुख समी नूर अरसों पुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत श्री महला चौथा जिन हर हिर

मुनगण प्रणाम निर्पैने काम आतदुत प्रचंड मृद गति अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाड्याण रण भाडे चाचरी शंब गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे कामे भुजंग प्रयात शंब चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दाने चतर जकर भजाने चतर जकर वर्ती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर भाषे चतर जकर वासे चतर जकर माने चतर जकर दाने चाचरी शंब न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिसाद सदृश कृषय भगवती शांत तव प्रसाद कथते के आशज देश के अभिज बेस के अगंज कर्म के अभंज परम के अभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रभाय के धर्मंग तुझाए के अशोक वर्ण है कि सर्व वर्ण के जगत कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुभव रूप है कि आद देव है कि आप भेव है के चतरंग विहीन है कि कह दीन है कि रोज जाकर ही मैं रहा गए कि बाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि आप बुलगना है कि शाह नशा है के कारण कुनंद है कि रोजी दहंद है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र भावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र बाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र द्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र माने है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फेम है के अकलो लाम है के साहब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशर सलाम है श्री कसम दाम है के नीमल सकाशत है ग्रीवल प्रास्त है बलंदर मकान है जमीन वाल जमान है समी जल तमाम है रुजोल नदान है हरी फुल जी मै रिया के जगीना ने गुल दरंग है बेद है पंग है अजी जल निवाज है ग्रीमल खराज है निरोगत स्वरूप है धर्मोक्त प्रभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजोग सुधा है सदैव स्वरूप वेदी अनूप है समास्त पराज है सदा सर्वसाज है समास्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाध है अनूप है ओ अंगाध रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गम त्रिभाद्य अगंजे अगाधे शुभम सर्वभाग्य सो सर्वा निरागे त्रिभुक्त स्वरूप है अशज है शूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनोक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है चाचरी शंब अपांग है नांग है बेघा लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है वह भूत है दूत है नाश है उदय है दंत है बंध है अपगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है निजंत है सुनंत है लेख है देख है अलेख है अपेख है अटायगा है अजय असम है गम है नीला नाद है नित नित जात जात है चरपट छंद तक प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसा बल छंद तव प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे अभंगंग भूते ब्रह्मांग ब्रह्माथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माता न जात न पात नरसाकं श्री गमितो मी कहें
सुदैवं प्रवाह जय जय भगवती शांत प्रसाद के जहर दूर है के आदर हजूर है मे सर सलाम है समा सल गुलाम है के साहब दिमाग है के उसनों चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमल कमाल है के उसनों जमाल है करीमल राज है करीमल निवास है हरि फुल सिकान है रासल पकान है कलंक प्रणास है समा तुल निवास है अगंजल गनी मर जाय कर ही मैं समा तुल जवाहे के साहब ग्राह है गणक प्रणास है बह तुल निवास है के सर्व लगवान है मे सुल रवान है तमामुल तमीज है समा तुल जी जाए बरं परमीश है समा तुल अधीस है दीसल लीख है मे सुल भी खाए जमीन उल जमा है मी कुल मा है क्री मुल कमाल है गिजर उजमाल है गजलिंग प्रकाश है मित सुवास है गज विश्रूप है कि मित भूत है के मितो बसा है के आदम प्रभा है के जलंगनांग है के मितो पांग है मद पार शांत तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर भर अगांजु हर नर पर पांजु गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखांडु भर नर अमंड आन पव्य नाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जयांग आसन अपांग उपमा पार गात्मित उदार जल थल अमंड देश विश्व पांड जल थल महांत दिश विश्व अंत अन पवनाश त्रित दर दुराश अजन वाह कैसदास ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम जित चरण नाम अंश जगात अज जना बात अंश जगात अंदरंज बात अंटुट भंडार अंठ टपार आडीठ धर्म अतडीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तव प्रसाद करुणालया है हर कालिया है खल खंडन है मह मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड है कलखंड है परति पर है करुणा कर है जपा जप है तप तप है अकृत अकृत अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणाकृत है अकृत अकृत है धरणी धृत है अमृत अमृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृत अकृत अमृत अमृत है अजबाकृत है मृत अमृत है निर्नायक है खल कायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है बहुपंजन है हर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्मवास है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग दाम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकाले अनंगी अकामे

अनाम काम गहराति ब्रमा तेजो नियमो नी नाग्य नरंगे नूपे न रेखे कर्मंग बर्मंग गंजे लेखे पुजंग प्रया दिशा नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे गंजलो नामे समास्तल निवासे इंद्र कामंग बभूते समास्तल स्वरूपे गो कर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी क्रीमल कनिंदा समास्तल निवासी अजायब बभूते अजायब गनीमे हरियंग करियंग क्रीमल रहीमे चतर चक्र वरदी चतर चक्र भुगते सुयम पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्र वरदी चतर चक्र भुगते।

जी अस्तुज तब सरणी परे दिन के दोष्ट दुख तब मरे पुरुष जवन पग परे त्यारे दिन के दम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है दा के काल निकट नहीं आए हैं रचा हुई दाए सब काल दुष्ट रिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरि हो ताके ताप तन कमो हरि हो रिद सद कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सक न कोई एक बार जिन तमें सुभारा काल वास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम त्यारु कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हाथ दल उबारी सर्वठार मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिह बचाई खड़ग गेत मैं शरण तिहारी आप दल उबारी सर्वठार मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिह बचाई खड़ग गेत मैं शरण तिहारी आप दल उबारी सर्वठार मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिह बचाई राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्दों दा गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सुवारना सबना गल्ला सम्राट स्वामी सो के मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा है करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहेब क्या नहीं कर दे रहे साचा नाम मेरा दारू साच नाम आधार मेरा जिन मुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया जिन इच्छा सब बजाइया सदा गुरबाण किता गुरु बिटो जिस दियां वड्याइया कहे नानक सुनो संत शब्द रुपयारू साचा नाम मेरा दारू वाजे पंच शब्द तुद कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे साची लवै बन देन माणी लवै बाजो क्या करे विचारिया तुद बाद समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया इस नोर साओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लवै बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु दे जानिया जाने आनंद सदा गुरु दे कृपा करे प्यारिया कर कृपा करे वे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिन का मोह दुटा जिन का सब सच सवारिया कहे नानक आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सुजन पावे पावे ता सुजन दे जिसन और क्या करे बेचारिया एक परम भूले फिर देस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन बण पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवहो संत प्यारे हो कथकी करें कहानी करें कहानी कथगिरी के द्वारे पाई है तन मान तन सब सौ गुर का हुक्म ने पाई है हुक्म

सावण तना सुहागणी जिन राम नाम उरहार नानक हर जी माया कर शब्द सवारण हार। सावण तना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी तुम मात पिता हम तुमरी कृपा महासूर कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत चेचा भगवंत सगल समगरी तुमरे तू करतारी तुम ते हो स्वजकारी तुमरी दास मैं तो तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बान।

तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहा। हर कीरत कलयुग पद उत्तम हर पाइए सतगुर मांझा। हौ बलहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलो वडभागी सब किल विख गए गवाजा। सतगुर शाह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तारो मन माजा।

जिनका कृपा करी जग जीवन हारे और तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी। बारह माह माज महला पंजवां।

सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रता सच रंग इको नाम आधार बिख्या रंग कुड़ा बया दिसन सभ्यार हर अमृत बूंद सुहावनी मैं साधु पीवन हार वण तैण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलना नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तन कै सद बलहार नानक हर जी माया कर शब्द सुवारण हार

सावणत ना सुहा गणी जन राम नाम उरहार। नानक हर जी माया कर शब्द सवारण हार। सावणत ना सुहा गणी जन राम नाम उरहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी की महान कृपा सदकाज अमृत वेले सतसंगत करन दा सुभागा समा प्राप्त होया। हाड़ दा महीना गुरु जी दे हुक्म अंदर सुख दा बतीत होया। अज सावण दे महीने दी रंभता होई है। सतगुरु जी का कोटानकोट धन्यवाद। सतगुरु जी मेहर सदका सावण का महीना आरंभ होया। सावण के महीने के सतगुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी बारह महामाझ के बचन करते हैं। सावण सरसी कामणी चरण कमल सो प्यार। कहते भाई सावण के महीने वो इस्त्री

मन तन परमेश्वर के रंग में रंगया होया है। मैं एक नाम का आधार है, नाम का ही आसरा है। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सभ्यशार, जड़े रंग दी दे रंग तमाशे दुनिया के, ये बिखिया भाव खत्म होने वाले आ, जहरीले है ते कूड़े झूठे है। हर अमृत बूंद सुहावना मिल साधु पीवनहार, बिख्या दे रंग विचों निकल के अमृत रस दे विच आके समाउणा है। ये अमृत की बूंद परमेश्वर तो मिलती है, गुरु राही मिलती है, तो बहुत सोहनी है, सुहावनी है। इनू पीण वास्ते साधु दे नाल मिलाप करना पऊगा, मिल साधु पीवनहार, क्योंकि साधु ने आप मेहनत करके ये मंजिल तय की है। जदों साधु नूं अमृत बूंद मिलती है फिर उहदा जिहड़ा सुरत दा टिकाणा है किसार हो जांदा है। वाण तैन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख पार, मीह पिया, मीह दे नाल हरी बनस्पति सुके दरख्त भी हरे हो गए, कि उस परमात्मा दे नाल जुड़ के बड़ा आनंद है। हार मिलने नो मन लोचदा कर्म मिला बनहार, मेरा मन हरि परमात्मा नू मिलने वास्ते चाहुंदा है, तरलो मच्छी हो रहा है। हार मिलने नो मन लोचदा, मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर नू मिला, पर कर्मा के अनुसार ही बंदा परमेश्वर नूं मिल सकता, बिना कर्मा तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंगी। जिन्नी सखीए प्रभु पाया, जिन्ना सहेलियां ने परमेश्वर नूं पा लिया, जीवन सोहना है। जिन्हां नूं परमेश्वर मिल गया उन्हां दे जीवन दे विच खुशियां ही खुशियां होंदियां। मैं उन्हां तों बलिहार जांदा, गुरु जी ने कृपा कीती है। नानक हर जी माया कर शब्द सुवारण हार, हे नानक मेरे ते कृपा कर, मैं शब्द दी विचार कर सकां, शब्द नूं सुवार के सोचता रहा, नूं विसार के दूर हो गए। पर जदों परमेश्वर का नाम जपांगे फिर परमेश्वर ने साडे जीवन का काज सुवार देना। नानक हर जी माया कर, माया दा असर शब्द सुवारण हार, शब्द नूं सुन के समझ के सुवारण लग पे अपने जीवन नूं। सावण तना सुहागणी, जिन हार जिन राम नाम और हार, सावण दे महीने विच ओह सुहागणियां अमृत रस नूं पीदियां ने जिन्हां दा अपने पति प्रेम दे नाल प्यार है। परमेश्वर नूं मिलण वास्ते, गुरु दीआं खुशियां लैण वास्ते भाई सतगुरु जी की रहमत का पात्र बनने वास्ते परमेश्वर का नाम जपना पैना, बंदगी करनी पैनी है, नशे तो दूर जाना पैना। सतगुरु रहमत कर आने वाला समा सारिया संगत वास्ते चढ़ती कला वाला आवे, होइया बेअंत भुला ने क्षमा करनी, अगे तो समा तो रोशनी। इस तरह ही अपने चरणों के नाल जुड़ के रखना, बाणी बाणी का प्यार, आप जी के पावन दरबार की सेवा बख्शिश करनी जी, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

कोलू त्रिका चक्की चक तलवार बहुत अनंत लाटू मधानिया अनुगा पंखी पौंदे लैणसा सुए चाड़ पाई है जंत नानक पौंदिया गंत ने अंत बंदर बन पाए सोए पै कितन चै सब कोए नच नच हसै

सतगुरु विचाप रखियों कर प्रगटा सुना सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुका उत्तम विचार है जिन सच्चे सुन चलाया।

लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाए। धोती टिक्का ते जप माली धान मले छा खाए। अंतर पूजा पड़े है कते बा संजम तुरका पाई।

जितेंद्र सब को एक नदरी है चलाएंगा आपे देवड़िया आपे गन कराएंगा बटो बड़ा बट में ने सरस कहे लाएंगा नदरु पठी के करे सुल्ताना।

श्री गुरुदेव नमः अस्तपदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जास विशुंभर एक नाम जप अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एकाकर किनका एक जिस जीव सावै ताकि मह मांगनी न आवै कंखी एक दर्श तुहारो नानक संग मोह उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागै प्रभु कै सिमरन अंजन जागै प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्वन धन नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उधरे मूचा प्रभु कै सिमरन कृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किच सुझै प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से धनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन प्रवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तन अंध कन्हेरे प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपाते अंध

भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन नेचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक जन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक, दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरा चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं करे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जप्त हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जप्त निस्तरै, अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जप्त आघावै, जे मार्ग एह जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, झूठत नहीं कोट लख वाही, नाम जप्त तह पार पर आही, अनक बिघन जह आय संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साध कै संग, जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जह पैंडै महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा कोना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जह महाभयान तप बहु काम, तह हर के नाम के तुम ऊपर शाम, जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत जन रात, हर हर औकद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत विवेक, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओत सतानी, हर प्रताप जन अगन जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व टंडोल, पूज सनाहि हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म करिया, सगल त्याग मन मध्ये करिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती,
ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਿਸਰ ਥੀਵੈ, ਅਗਨ ਮਾਹੀ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਕਣਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ। ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤਉ ਕੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁਮੂਚ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ। ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ, ਕੋਟ ਅਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ। ਝੂਠ ਸੁਨਾਹੀ ਊਹ ਪਿਆਲ, ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੈ ਛੋਰੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਚੀਨਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਦੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ। ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵ ਹੋ ਦਾਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਵਰਾਤੇ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਤੀ ਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ, ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪ ਅਮੁੱਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗ ਹੈ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਖਨਹਾਰ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੈ ਗਵਾਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿੰਦ ਪਾਵੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣ ਤੂਰੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿਮਾਨ, ਕਿਸੈ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਦ ਪਜਾਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਥ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦਵ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ,
नानक काट लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, शब्द नाहीं कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वाह, गल पात्र कैसे तरह अथाह। जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओढ़ निभावै। कहाँ बुझारत बुझै डोरा, निष्कहिया तो समझै भोरा। कहाँ दिसन पद गावै गुंग, जतन करै तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तुहा उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाय सुआवै न चीत, जो बैराई ता सो प्रीत। बलुआ के गृह भीतर वसै, अनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह। याहु जुगत बिहानी कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर कर्म। तुम ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा महसूब कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक। देनहार प्रभ छोड़ कै, लागे आन सुआए। नानक कहो न सी जाए, बिन नावे पत जाए। अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण विखोट गवावे। एक भी न दे दस भी हिर ले, तौ मूड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकर स्योना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कार। जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगणत साहो अपनी देरास, खात पीत बरतै अनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होए। जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रखै, प्रभु की आज्ञा मन मत है। उसते चौगन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर्प होवत जान अनेत। बिरख की छाया त्यों रंग लावै, ओ बिनसै ओह मन पछतावै। जो दिसै तो चल नहार, लप्त रहो तह अंध अंधार। बटाओ स्यों जो लावै नेह, ताको हासन आवै केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्द कोहर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकच की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निराख दाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिस कै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता।
करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने, आप है आप करत ने बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रव शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावहे तिसको सिमरत परम गत पावहे, जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर, जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पह सिमरो तिस रसना, जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसै त्याग कत अगर लुभावै, जय प्रसाद सुख सहज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय, जय प्रसाद तु सब को मन मुक्ता को जस रसन बखानै, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पत सेती घर जावह, जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कह, जय प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे, जय प्रसाद आप हुकम पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय, जय प्रसाद अश्वहस्त अश्वारी मन तिस प्रभु कौ कबहू न बिसारी, जय प्रसाद बाग मिल थना राख प्रोए प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई, तिसे त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप, जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह, जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद, जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय वसना, जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत भाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मन हो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप, जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे।

नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोय, जो जो कह सुमुक्ता होय। सुन मिता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अर्थ करी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली होत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग सजै सब आप। आपे जाने साध वडाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कुलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध हृद वसै, नानक कुदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानहि, जेता सुनहि तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक दिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पा

आकाश जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान, ब्रह्मज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक दिन प्रभ आप करे, ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्मज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्मज्ञानी का होय सो फला, ब्रह्मज्ञानी सो फल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार।

ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहि, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अधाखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी

नानक हो अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब ते जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दिख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वरै नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अरपै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमृत बुझै मूल सूखम मह जान अस्थूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतार पथ प्रेत मुग्ध पाथर कौतार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहा।

जैसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग, पसरे वाप होए अनंत तरंग, लखे न जाए।

अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगात मनकोर कई कोट पर दर्व कह रह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाहे जित तित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सशिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्थास्त्र कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रगार जंत कई कोट किए चरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जप किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरा सब हूते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट बोजोनी फिरे कई कोट बैठते ही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किच प्रभु कै हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संग सिनंद विलागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लानते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट है अवतार कई ज्योत कीनो विस्तार कई बार पसरे पासार।

परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्परी। करण करावन करना जोग जो तिस भावै सोई होग, किन महथा उथापन।

नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जन न जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत। आपस कौ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे। धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे। धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होय जाए भसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जा का मिटा बिमान सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरतारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग सिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह को कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं कछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रब कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे। सह सिखटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए। जो किच कीनो सु अपने रंग सब से दूर सब हूँ कै संग। बुझ देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक। मरे न मिलस आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेश समझ आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार। उससे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए। अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार। मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आर जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छुटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोय संत का दुखन तन प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग जों लवे संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा में जले संत का दुखन सब को चले संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए की गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख के टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी कत काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर के सोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवन राखन हार नानक संत पावे तैं ले उबार संत का दुखी यों बिललाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ही धन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बुआर तिल खेत माहें दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सब मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिट कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसद करो दिन रात तिसह त्याव हो साज गिरात सब कछ वरत तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी।

जाकै सिमरन उधरिया नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय जिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जां सब किछ तिसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद तू टहा रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यों मंदर कोठा मैं थमन त्यों गुर का शब्द मन असमन ज्यों पाखान नाव चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तरह ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाछो धूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे दिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसह चितार जो किछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे आजान कौन बस्त आई तेरे संग लप्त रहो रसलो भी पतंग राम नाम जप हृदय माहि नानक पत सेती घर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत है संग चाल अवर त्याग दिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उज्जल हर दर गह सोय एह व्यापार विरला व्यापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साध के धोए धोए पियो आप साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु रखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत हंदर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्वनिधान जाके दृष्टि माहे प्रभु लिखे का लहना पाहे।

सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जानै होर। आनंद रूप मंगल सब जाकै, सर्व थोक सुनिय है घर ताकै। राज मह राज, जोग मह जोगे, तप मह तपी, सरग्रस्त मह भोगे। त्याए त्याए भगतै सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया। जाके लीला की नित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जिन

सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत नित बुझै जो कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि

हरे प्राणी जप नानक प्रभ लख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिया ती अमृत एह मन तन प्रतिय नाम रतन जिन गुरमुख पाए।

नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करह प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्ज रास। सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले।

एक है आप नहीं कछ परम सैस सियाणप लया न जाइए नानक ऐसा गुरबड भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत पर सचरण गत निर्मल रीत भेट तसंग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरख हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत।

बोल न पहुंचत प्राणी। अगम अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

नानक बलिहारी। श्लोक साथ ना चालै बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावन नानक एह धन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसार हो चरण कमल हृदय में उरतार हो तरन कारण सो प्रभ सिमरथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वक्त इहो धन संत हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख हो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंठ उठताव है सो धन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बच है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी अनक उपावे रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निधान है हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान।

होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र भेद विचारे हर की भक्त करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटा है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ते रथ हसवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुरु की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहो मन मीत निर्म

गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एकोट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे दुर्ला कोय जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने।

बड़ भागी जपया तब सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई।

अस्पति जब अकार जो कसना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अग्न पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज स्वभाय तब शिव सतत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे तब कवन निड्र कवन कत डरे। अपने चलत आप करने हार नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नासी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कह कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसै भूख कवन तृप्तावे। करण करावन करना हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाए तब कवन माए बाप मित्र सुत पाए। जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद कितेव कहाँ को चीन। जब आपन आप उतार है तो सगन अपसग

जय अचल अशेर अभेद समाया उहां किसै व्यापत माया आप कौ आपै आदेश त्यो गुण का नाहीं प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता जय आपन आप आप पतियार तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानका बस कौ आप है पहुँचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यो गुण में कीनो विस्थार पाप पुन तह पई।

अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देख, खेल संकोच है तव नानक एक है, जह अवगत भगत तह आप, जह पसरै पासार संत प्रताप, दोहूं पाख का आप है धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी, आप है कौतुक करह अन

अथाह अगणत अतोलै, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदे आप कथा आप सुनने हार, आप है एक आप विस्तार। जंत पावै तां श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे लै समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तत् कविता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ।

अपने कर्तव जाने आप, अंतरजामी रहो व्याप। प्रतपालै जीअन बहु भात, जो जो रत्यो सो तिसे त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरती जाए। सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अनगन पूजे गुर के पैर। एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ दे का करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुहाओ। आठ पहर प्रभ वेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो। हलत पलत दोय लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बस है तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपहो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगह निभह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहर न आवह जाहे। तिस ते दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार ते आए। निर्भउ जपै।

सेवक परवान, अंतरजामी पुरुष प्रधान, जिस मन बस सो होत निहाल, ताक नित न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर प्याया।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्याग हो त्रंग, संग जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पार ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाल एह रत्न। संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक है निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अंद करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महान कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभु धारी, नानक निधि खेप हमारी। प्रभु की औसत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगाश, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत्कवेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख तने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मह ताकि गत होए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ जीत। जन्म मरण ता का दुख निवारै, दुलभ

जित मिले चूके सब सोग संतापे, हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाय, माया मोह परम पै फूले,

सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रासु मिटाय। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाय। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटाय। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाय।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.